0: कृपाया है। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए। कावे को तान होवे किसे तान।
1: कावे को दाचा रहनी शान।
0: कावे को गुनवरिया या चार।
1: कावे को बेरिया विकम विचार।
0: कावे को साच करे तन के।
1: कावे को जिया लापिर बे।
0: कावे को जापे तिसे दूर।
1: कावे को बेगे हजवा हदूर।
0: कतना कतीना आवे तोट।
1: कत कत काती कोत कोत कोत।
0: देता दिल ते तक पाए।
1: जुगर जुगर तक काए काए।
0: हुक्मे हुक्म चलाए राहो।
1: नारक देख से बापर भाओ।
0: सच साहेब सच नाए पाक्य पाओ पार।
1: ताके मंगे दे दे ताकरी न थार।
0: फिर के अगे रखिये जित दिसे दरबार।
1: बोलत बोलन बोले जित सुंदरे प्यार।
0: अमृत वेला सच ना वड़िया ही विचार।
1: कामरे आवे कपड़ा नदरे नोक द्वार।
0: नानक वे जानिए सब आपे सचियार।
1: आपे न जाए कीतर न होए।
0: आपे अपन रंजन सोए।
1: जिनसे भी आतिन पाए मान।
0: नानक गावे गुणे नतान।
1: गावे सुने मन राखिया पाओ।
0: दुख पर हर सक्का ले जाए।
1: गुरुमत नेदान गुरुमत बेदान गुरु करे सुमाए।
0: गुरु ईश्वर गुरु गुरु परमा गुरु पर पति माए।
1: जय हो जानो अखनाहिया काहना नाम जाए।
0: गुरु एक देव जाए।
1: साधना जी का एक दाता सो में भी सर्व जाए।
0: तीरत नाव जित सपाव बिन पाने के नरी करी।
1: तेती सिर पाए बैकर बिन कर्मा के मेरे लाए।
0: मात विच रचन जुवा हर मानक जेक गुरु की सक्षणी।
1: गुरु दाए बुझाए।
0: सबना जी का एक दाता सो में भी सर्व न जाए।
1: जय जिन चाले हर जा हर आसनी।
0: नवखंड विच जानिए ना चले सब कोए।
1: चढ़ नाव राखे के जस की रात चल जाए।
0: जे जिस नर न आवे ता वत न पुछे के।
1: कीता अंदर कीत काल दोषी दोष तरे।
0: नानक निर्गुण गुण करे कन बांते आगंदे।
1: ते कोए जन सुजे जे जिस कुन कोई तरे।
0: सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ।
1: सुनिए गलत वाला खा।
0: सुनिए दीप लो आप ताल। नानक भगत सदा विकास।
1: सुनिए दुख पाप का नाम।
0: सुनिए ईश्वर पामा इंद।
1: सुनिए मुख सवार मान।
0: सुनिए जोग जगत तन पे।
1: सुनिए सासत सिमरत बे।
0: नानक भगत सदा विकास।
1: सुनिए दुख पाप का नाम।
0: सुनिए सत्संत ज्ञान।
1: सुनिए आसस का स्नान।
0: सुनिए पाप पावे मान।
1: सुनिए लागे सहज ध्यान।
0: नानक भगत सदा विकास। सुनिए सुराग नाकेगा।
1: सुनिए सिख पीर पातशाह।
0: सुनिए अंधे पावे राहो।
1: सुनिए हाथ वेस गाओ।
0: नानक भगत सदा विकास।
1: सुनिए दुख पाप का नाम।
0: मने की गत कही ना जाए।
1: जे को कहे पछे पछताए।
0: काकर कलम न लकन हार।
1: मने के भय करन विचार।
0: आसा मान जन होए।
1: जे को मान जने मन होए।
0: मने सुरभ वे मन बुद्ध। अमने मोचो टाना काए।
1: मने चके सत न जाए।
0: आसा नान रंजन होए।
1: जे का मान जले मन कोए।
0: अमने मग टक न पाए।
1: मने पाचे पल गिन जाए।
0: अमने मग चले न पंत।
1: मने दर से ती संतान।
0: आसा नान रंजन होए।
1: जे का मान जले मन कोए।
0: मने पावे मुक्त द्वार।
1: मने पावे रे सद्धान।
0: अमने तरे तारे कृषक।
1: मने नरक पवे
0: आसा

जिन अपने करमान इन में कछ संगी नहीं नानक सच्ची जान बदत उदारन बहरा।

सिमरत काहे न राम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोई को नानक सुन रे मना ते सिमरत गत हो।

सुन रे मना मुक्त ताहे ते जान हर एक सोख जाके नहीं पैरी मीत समान को नानक सुन रे मना मुक्त ताहे ते जान पैकाहू को देत नहीं बेमान

हरभजन बीरता जनम सिरान जो प्राणी निस दिन बजे रूप राम ते जान हर जन हर अंतर नहीं नानक सची।

चेती मद माया के अंध को नानक हर भजन बिन परत हे जम कर फंद सुख में बो संगी भाए दुख में संग न कोए को नानक हर भजन ना अंत सहाय होए जन्म जन्म बर मत फिरियो मिटियो न

छूटे मान कहा करे जग सुपने जियो जान, इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहयो बखान। करत गर्भ करत है देखो बिन से छिन में मीत, जे प्राणी हर जस कहयो नानक ते जग जीत। जे घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं नानक सची मान। एक भगत भगवान चे प्राणी के नाहे मन, जैसे

जो एक मन हो एक चित, तीर्थ कर भरत अरदान कर, मन में धरे गुमान नानक ने फल जात ते, जियो खंशर इशनान सिर खम पियो भग डंग मंगे, नैन जोत ते हीन को नानक ए बिद भई, यो ना हर रस लीन, निज कर देख्यो जगत में।

नानक ए जगत मैं किन जपियो गुरमंत राम नाम गुर मैं जायो जाके सम नहीं कोय जय सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होय मंदावनी मेला पंचवान थाल भजन वस्तु कयो सत्संतो विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सितारो जेको खावे जेको जाए जिसका होए उतारो ए वसत जी ने जाए नित निद्रा गुरुदारो तम संसार चरण लग धरिया सब नानक।

अष्टभूत भैरव के गावे गायन पांत्र दुतिया माल कोसक अलापे संग रागनी पांचो ठापे गोंड खरी अरे देव गंधारी गंधारी से सूत उचारी जिनाश्रिय पांचो गाई माल राखो सक संग लाई मारु मस्त अंग में वारा प्रबल चंड को सक ओ बारा को खट ओ पुराण नर गाए अष्टमाल को सक संग लाए पुनियायो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सूत्र

साक्षते उरति दिया अनल मलागा मिर्थक पिंड पद पद ना हेनस एक अज्ञान सुनागा रे नर गर्भ कुडल जब आछत उर्द ध्यान लिवलागा मिर्तक पिंड पद पद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन संबल समल कष्ट महा दुख अपचित अधिक पसारिया करब चौड़ मित्र मंडल आया तो नरहर मन हो भी बिसारिया